हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: क्या हुआ माया?
1: डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो?
0: मुझे? सिली गर्ल, मुझे क्या होगा? दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: arms up, mate.
1: Thanks.
2: अरे thanks Kaika. I love to drive.
1: Oh नहीं उसके लिए नहीं. आज तुमने किया. Personally मुझे fight fight बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन I felt happy. Honestly I just hate violence. लेकिन आज तुमने मेरे लिए लड़ाई की. Somehow I like it. मैं जो कह रही हूँ तुम समझ रहे हो? नहीं समझ रहे.
2: समझ लो. I love you, Sneha.
1: I don't know.
2: I don't know. Help.

0: एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का, मैं तुम्हें कॉफी पिलाना चाहता
1: हूँ।
0: अच्छा पहले फिल्म पर कॉफी।
1: विक्की, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो।

0: game set for arms of me.
1: तुम जानती हो ना मेरे पास बार में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दोस्त हाँ देखा सब कुछ बोलिया मैंने इसको कुछ छुपाया नहीं Come on, man, I really love her.
2: Yeah, I love you. You're the first guy in my life. मुझे नहीं पसंद है कि तुम किसी और के साथ
1: यार तुम हद से ज़्यादा पसंद हो
2: तुम्हारा पता है मैं पसंद हूँ पर तुम मेरे किसी के साथ
1: किसी से बात नहीं कर सकते ना